0: साथ में कोई ना साथ बिन साथ ना दिसे जग विच कोआ रहो संत हाटोर
1: साथ।

नदी पार कर रहे सन, एक अबला स्त्री उन्हां दे मगर मगर वेख्या। नौजवान छाला मार दे होए नदी पार कर रहे ने, ओ अबला स्त्री भी ओनू भी हौसला आया। है ते पावे ओ निर्बल सी, पर वेख्या इतने सारे नौजवान लंघ गए ने ते मैं नहीं लंघ सकदी। ओने भी छाल मार के ते नदी जदों मारी छाल ते ओ भी पार पै गई। बाबा जी कहंदे ने महापुरुष नाम जपण वाले संत मानो नौजवान ने इस दुनिया विचों जित के जांदे ने, पर तू अपने आप नू निर्बल समझदे, पर ओना नू वेख ओ पार पै गए ते तू किवें ना पार पएगा। एक वारी तू नाम जप संता दी तरह तू भी मार दे छाल, उस गोरी दी तरह तेरे मन विच भी धीरज आवेगा। बाबा जी कहंदे ने जे नहीं जपेगा मेरा तू सोना ही इकट्ठा करना है, ते फिर अगे आरा तैयार है तेरे लिए जिदे नाल तेरे दो फाड़ कीते जाणगे। कहंदे ने

बच्चे नूं जुड़दियां 6 महीने हुंदे ने। बाबा जी कहंदे ने वेखो इस दी तैयारी विच 6 महीने लगदे ने। इक इक त्रोपा लगदा है, इक इक लत बांह नक अखां जुड़दियां हन। 6 महीने त्रोपे लगदे रहंदे ने, जदों टुटेगा आवाज भी नहीं आउणी, इक्को ही झटका लगेगा, इसने खत्म हो जाना। कहंदे ने

Ya, ya, ya.

I don't know.

लक्ष्मण व प्रभु प्यारी सत्संग राय बलाल राय कोई कमेटी का मालिक मुसलमान होना है पर धन गुरु नानक के प्यार से राज रोंदा रहता है दीवाना होया ना रात्रि नींद है ना दिने चैन है दो महीने दादिया मैं सभी का उलूट रहा कोई पता नहीं किसी ने मौत ही छल आवे से रोड के ले जावे जी सोने का चल और कुछ नहीं चाहूंगा प्यार वाले की इच्छा बाबा सुखी जी महाराज वचन कर देते डॉक्टर को जाइए मैं सारिया एनकम आदि एनकम एक ऐनक जी होती है वो पढ़न भी होती एक ऐनक दूर वेखन भी होती कई शौकीनी भी ऐनक लगा लेंगे अख शरीर वाले एक दिन सारा जलंधर तू लुधियाने जा रहा है गड्डी ठीक नहीं सी बस एक सफर कर रहा है गर्मी के दिन भी सर सर्दी और खास गर्मी में एक यंग मैन नौजवान लड़का मेरी सीट ने नाम देखा हुआ देखे बड़ा सुंदर नौजवान है मैं पूछा काका तेरी सेहत तो बड़ी चंगी है पर तेरी अखा खराब हो गई हर साल मैं खिलाई देता है अब तो यह कह लगा भाई जी ये अखा खराब नहीं होगी मैं क्या तेरा से क्यों लाई है कह लगा न्यू लाइफ भी है लगे आपको श्री वस्तु मैं क्या भावे खा की लाइट मुक जाए पर न्यू लाइट का जरूर जारी नहीं सकते ये भी कहने पर सारी अखा डॉक्टर को लग गई बाबा जी कहें सन इसे तरह तंदुर मार के व्यापार भी एनक लग गई इस मालक ने व्यापार भी एनक लग गई कोई पुत्र भी एनक लगा वास्ते आ जाता कोई माया भी है शरदा जी माया चाहिए मिल जाती कोई वही चीज नहीं इतना बड़ा जाता है फिर में चीज चीज को राजपाल ब्रह्म गरीब कोई मान मटियाई भी एनक लगाने वास्ते आ जाता है कोई मकान भी एनक लगाने वास्ते आ जाता है पर बाबा जी कहते सन कोई गुरु नानक में दर्शन करने वास्ते एनक लगाने वास्ते आ बाबा जी महाराज कहते सन लोग दुनियावी एनक लगाने सारी दुनिया आती है पर धन गुरु नानक के दर्शन करने वाली मैं भी कोई हिरदा कोई हिरदा आके अरदास करे पाओ

ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਜ ਗੁਲਾਬ ਰੋ

میرا دل تو کیوں نہیں سما ہے؟

आवाज पर करें उन्होंने आवाज देकर के सारे उन्हें बख्शी सारे धर्म तुम्हारी भाई बख्शी तुम्हारी रात है मेरा वाली रात है और मेरी सास प्यार नाल सारी धर्म का

अरदास कर रहे थे। इधर में कालू दिया राय बुला रहे बड़े सत्कार आ कालू सुना कोई मेरे धन गुरु नानक दिखो कल आवेगा मेरा माही एडे वे छोड़े देंगे कालू तू अरदास कर मेरी अरदास नहीं सुनगा मेरा माही क्योंकि मैं पापी किसी पुन्नी की पुकार किसी गुरमुख की अरदास कालू मेरा जलवा फिर मेरा जीवन सफल कालू दिया भी तो राय जी यह ठीक है मैं अरदास कर नानक आवेगा डिगली जे मैं अरदास की थी तो आना नानक भी वापस चला जाएगा आपको श्री वाले क्योंकि मैं वो माया का कीड़ा हूं जिसने 20 रुपया बदले गुरु नानक के थोड़े मुकड़े से चमेड़ा पाए 12 साल के विछोड़े में एक रोते पुत्र में विछोड़े थे अज से कालू को भी निर्भर कर पश्चाताप कर वो हर जिना नाल मैं लाल के सोने मुखड़े में चपेरा पड़े अज्ञान कर एक दिन कह पिता नाल जी पिता जी रेख रह के कम नहीं चलेगा कोई काम करो जो आगे ले 20 रुपये ले जा कोई सौदा कर कोई बिजनेस कर मैं तेरे नाम का भाई बाले को तोड़े बाले नाम कभी अनजान है तू ख्याल रख अब तभी अगर तीस पचासी लिया भी तो 25,000 तोड़े चाहिए चले गए जंगल में टके सारू आधा चुट बैठा अरे कह लगे बाले जी महाराज आप इतना महापुरुष है जो दर्शन करेंगे रब दे प्यारे रब दे प्यारे के दर्शन कीतिया रब चित आंदा आवे सार चित तेरे भगत मन की कटिए मैल सार करे बाले ने कहा महाराज आप जेड़े काम आए हो करिए सानू की लोड़ है क्योंकि बाले को पता सी अभी सारा अरबों का प्यार कर रहे कितने इसी का समाधि लगा के बैठ जाए अरे कह लगे पहले महापुरुष के दर्शन भागा ढंग चंगा महाराज आए इन्हों का जरा मन से बड़ी वडेरी उम्र का चिट्टा अजू वर्गा था एडा वा लिटा का उसे जुड़ा किया साहबा ने आके आदेश दिता इन्हें निर्दर्शन सत्कार मार दिखाया दुनिया को दाता देने वाला दुनिया का राजक मेरा धन गुरु नानक अगर मैं प्यार नाल पुछया महाराज सुनाओ भोजन छके आपको जिस तरह मां प्यार जाके पुत्र नु कहंदी है क्यों पुत्र प्रशादा छक लिया ये तो छक लिया तो मां पहले रह जाए ये नहीं छकिया था तो सच्चा पिता आज कुछ के मंत्र ने किया महाराज कितने दिनों का पूछ ले हो एक दिन का दो दिन का तीन दिन का इन्हें क्या 5 दिन हो गए हम प्रसाद भी सब का प्याला पी के बैठे हर उठ कह लगे बाले जी महाराज पिताजी ने की किया सी पिता ने किया सी खरा सौदा करे है सच्चा सौदा करे है हजूर कह लगे बालिया इस तो वाला सच्चा सौदा हो कोई लाभ वाला कोई सौदा नहीं की करिए 20 रुपया का सीधा लिया के भूखे साधुआ भोजन बालिया महापुरुष में मोह जिसने में अन जाएगा रब खुश हो जाएगा गुरु नानक आके सुन भाई बाला ये सौदा है लाभवंद
اب کریے سب کا تیری کر کے ساری باتیں نے بڑا سمجھایا مہاراج پتا کے غصے میں جان دے ہو کہ نہیں بالیا پتا نے ہی کیا کھڑا سودا لاؤ والا یہ سب تمہارے چوڑ کھانے جا کے سیدا کے اندر پرسان تیار کیا مہاپرشوں کو چکایا جسے سارے نے چکیا پرساد سکھے میں روٹی مل جائے شانتی آئے سارے پرسن تو جرا کہ مہاپرشوں کا من سی اور اندر دھیان ہو کے چکیا تو جی منا عمر چھوٹی جائے تو کام بڑا واٹا ٹیچر ہے کہ پیار لال ہی کسی کو پرسادا چکار نہ اپنے ہاتھ پتا نہیں یہ کون ہے جس نے مہاپرش نے اس نے اندر دھیان ہو کے ویکیا حیران ہو گیا یہ تو آپ اپیل ہو گئے یہ تو آپ اکال پورک ہے نرگن کو سب لوگ بتائے گئے اسے سانو درشن دے واسطے آیا ہے اٹھیا رہ نہیں سکیا گھر میں مار دے گئے یہ لمبی جمع ایریا نے کیا گرو جی یہ کی تک نکا دیا بال کا جی متے پہ ڈگ رہے ہو پنت نے کیا نہیں جہاں تمہیں نکا دیا بال کا دیتا ہے یہ سارے تو وڈا سارے تو آئے کئی پڑھ گئے نا

सारे महापुरुषों ने साधा ने धन गुरु नानक अगे नमस्कार की सारे ने कहा धन गुरु नानक चंदी उठे साधुओं ने प्रसाद छका के हजूर वापस मुड़े तलवंडी के नेड़े आए कह लगे बाले बालिया असि तो इतने बहवे तू घर चला जा। बाले ने किया बड़ा समझाया कि नहीं समझे गलती कर बैठे हैं हूं इतने लुक के बहना चाहते साधु बच्चे बाला अपने घर आ गए कालू उड़ीकता पिया नानक सच्चा सौदा करने वास्ते गया पाया आया नहीं किसी ने क्यों नहीं था जी भाई बाला आ गया। अच्छा फिर नानक क्यों नहीं आया मैं क्या कालू भाई बाले के घर चला बाले जी बैठा नानक कितने भाई बाला बोले मैं तेरे फिर पूछे नहीं बोले तीजी वेरी हौली जी गया उथे वणा दिया चंगिया लुक के बैठा क्यों क्यों लुकिया है बनाए दसो भी रुपये थानू दिते सन कितने बना के लिया ने तीह के पच्ची बाले ने किया मेहता जी रुपये की बना के लियाने सन तो मूड़ी गुल हो गई है आखो श्री बने मूड़ी और किस तरह सारी विख्या कर कालू के अंदर गुस्से की ज्वाला बल तेरा लाल हो गया किथे है नानक अज मैं नानक नू जीवदा नहीं छ मेरा घर उजाड़ जा रहा है मेहता कालू क्रोध पिंडाल माता तृप्ता नु पता लगा अज बड़ा गुस्सा आया है पता नहीं मेरे लाल लाल की करन मेरे बुलाया नहीं नाल की जी अम्मी जा तू जाके पिता नु समझा दे कोई भी 20 रुपये ही है बेबे 2 रुपये मां ने सोचा नौजवान धी घरों पर भेज दिता है पिछे नौकर नु भेज दिता नहीं रह सकी मां आप भी मगर मगर कर ले कालू पहुंच अगे हजूर समाधि लगा के बैठे पता नहीं किहड़े प्रोग्राम पे सोचते जगत जनते नु ठंड पाउण वास्ते पता नहीं दादा किहड़े विचारां विच बैठा जा भी नहीं पैसे कालू ने हजूर की मां पकड़ के खड़ा कर लिया गुस्से में लाल अखा करके गया कितने हर मेरे वीर भी कल सुनत दुनिया का दाता हजूर ने एक मेरी अखा खोल के पिता वाल तकिया फिर नजर नीचे कर गुस्सा चंडाल में इस चंडाल गुस्से ने किया प्यारी सात संगत मेहते कालू का खब्बा हथ फेर ते मेरे धन गुरु नानक की सच्ची सच्ची गल के उत्ते चपेर सोहना मुखड़ा गुलाब वाला मुखड़ा इतना सोहना मुखड़ा चपेर वजी गुलाब दिया पंखड़िया कुमलान लगे नीर पै गए देते पहुंच देवे ने सोचा चंगे मौके से पहुंच गई आज मेरे पिताजी ने वीर वास्ते कुछ नहीं किया पर जो मेरे अगे होके तकिया की तकिया नरंकारी वीर ने सोने मुखरे से नील पै उपा मार के रोके कह लगी पिताजी मेरे वीर नु ना मैं कभी वीर नु ना मैं मेरे की कहती है ना

कितना प्यार है सहयोगा मुझे भी आज कल पश्चाताप रो है अपनी गलती पसंद करके रो रहा है। राय जी हर जाम वो हथे जिना अखा नाल नानक को चपेड़ा मारना रहा मैं तो माया का कीड़ा हां मेरी अदाल सुन के नहीं आएगा तुम करो राय जी फिर तुफान कभी अखा दिया छिपिया प्यार के सुचे मोती गुजर लग गए फिर कहें की

नैनों पेट ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद मिले पार।

सभी बच्चे छोटे विश्वास पैदा करिए। आनंद समय जन बहुत पक्या है, एकाग्रता बहुत बखी है, उस एकाग्रता का दान दासियां ध्यान पाओ ताकि आप गुरु साहब बाणी के गुरु ग्रंथ साहब हजूरी बैठ के उस निजी गोद का आनंद मान सकी। फतेह बुलाओ जी प्यार सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जन्म सुबेरा गुर सिख रहती

कृष्ण बड़े जपिया कर कृष्ण।

वाहिगुरु गुरु मंत्र सुनाप कर श्रेयां जप जाप कर इश्नान।

ਸੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰਨਾ ਪਹਲ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿਕਰਾ ਤੇ ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਮੁਰਗੇ।

ਕਰਨ ਅੱਖ ਕਰਨ।

मेरी रणी रहे कोई मेरा उसका मैं उसका तेरा

साहेब मैं उसका चेहरा रखना मैं सिख कहावे रात बिना दर सुटा खावे रात बिना सुख कभू ना रहे करते रहते सुदृढ़ कर।

Yeah.

मोरिया ब्याह तुझको कुमाया, मोरिया ब्याह पर नारी दे लेन न जावे, मोरिया ब्याह एक नारी सदा जटी है, मोरिया ब्याह पर नारी की पैन बिठाने दे पुराइया चलिया, मोरिया

खुद जब से हम करी बचली गए हमारे पूछे पर तो है प्राण जब लगता थारे मोरे।

Thank you.

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग है, जहां जहां पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

अच्छा फरमान जी, आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी।

जाओ कृपा गोविंद भई। When the Lord of the universe became merciful, सुख संपत हर नाम फल पाए सत गुर मिलई। When the Lord became merciful, I found peace, wealth and the fruit of Lord's name. I have met the true Guru. अपुष्ट बात ते पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई। That which was upside down has been set upright. The deadly enemies and adversaries have become friends. अंधकार में रतन परगासेओ मलीन बुद्ध हचनई। In the darkness the jewel shines forth and the impure understanding has become pure. जाओ कृपा गोविंद पई। When the Lord became merciful, सुख संपद हर नाम फल पाए सत गुर मिले। I found peace, wealth and the fruit of Lord's name and I have met the true Guru. मोहे किरपन को कोए ना जानत सगल पवन प्रगटई। No one knew me, the miserable miser, but now I have become famous all over the world. संग बैठनो कही ना पावत हुन सगल चरण सेवई। बिफोर नो वन वुड इवन सिट विथ मी बट नाउ ऑल वर्शिप माई फीट। आड़ आड़ को फिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई। आई यूज टू वॉन्डर इन सर्च ऑफ पेनीज बट नाउ ऑल द डिजायर्स ऑफ माई माइंड आर सेटिस्फाइड। एक बोल भी खपतो नाही साध संगत सीत लई। आई कुड नॉट बियर इवन वन क्रिटिसिज्म बट नाउ इन द साध संगत द कंपनी ऑफ द होली आई एम कूल्ड एंड सूद। एक जी गुण कवन बखाने अगम अगम अगमई। वट ग्लोरियस वर्च्यूज of the inaccessible, unfathomable, profound Lord can one mere tongue describe. Das, Das, Das ko kariyo, jan nanak har saranai. Please make me the slave of your slaves. Servant Nanak seeks the Lord's sanctuary. Jau kirpa gobind, sukh sampat har naam phal paaye, सत्य।

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में अवर खिने में अवरा अचरज।

तिस गुर को सद करी नमस्कार, तिस गुर को सद जाऊं बलहार।

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुरु उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जीओ वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया है। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राही भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी रहो इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिकर नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसा गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बनीआं। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आंदा है कि जदों किसे स्याणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरु

काया पलट के आए जुगत ओयो रखी जोत ओयो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए अवतार तारिया और तरे ते उना ने सदियां साडे सामने जी के दसिया ग्रस्ती सन कोई तारकुल दुनिया नहीं सन रिश्तेदारा वाले सन साडे वांगो कारोबार वाले सन साडे वांगो पर इन दुनिया विच रह के पानी विच रह के किवें नरलेप रहे ने पानी तो मुराद है माया बहुरंगी माया अनेका रूपां वाली माया जिन्हें वड्या वड्या नूं छलिया पर किवें इस नूं छलिया गुरु साहिबान जी ने ते ओहदे प्यारे महापुरशां भगतां संत जनां भगौतियां ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹਿ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ੍ਰੁਤ ਪਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਹਿੱਤ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਰਾਹਬਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ महान महान उपकार कीता अगलवन 239 वरे यके बाद दीग रहे जो तोहा जुगत सा राम करी बार सत्ता पलट जो तोहा जुगत सा सरकाया फेर पलटी मुबारक हन ओ महापुरुष संत जन ग्रस्ती वीर जेडे फिक्र नाल उसका जिक्र कर देंगे जेडे फिक्र नाल उस जीवन नू गुजारन लई उचेचे फिक्रमंद रहिंदे ने जो गुरुआं नूं पाया है जो होना जिया है इस शब्द द्वारा परम तत् दी प्राप्ति वास्ते जदों दुनिया विच लोकी अन त्यागी वैरागी शैवी सन्यासी तारकुल दुनिया गुफावां मंदरां कंदरां विच वड़न नूं ही उच्चा ते सुच्चा जीवन समझदे सन ते इस काया नूं जो परमेश्वर ने अपने ही रहण लई हरिमंदर साजिया होया है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे वाक्यां अनुसार इस काया नूं कई कई ढंगा नाल खराब करदे सन करूप करदे सन जैसा कि श्री भाई गुरदास जी भी कहंदे ने जोगी ज्ञान विहूणिया निसदन अंग लगाए निशारा नर नारायणी दे इस देही को सिमर है देव ते स्वाह दे उत्ते मल लैणी जां फिर पठियां जां फिर धूणियां दे विचकार बैठ के शरीर नूं सुकाउणा रत सुक जाए काम तो छुटकारा हो जाए ऐसा कदी ना होया तो गुरु साहिबान जी ने अपनी बाणी द्वारा भी नानक सो प्रभ सिमरिए दिस देही को पार ए हुकम कीते ते इस शब्द द्वारा भी फरमांदे ने कि इस काया भांडे नूं भी स्वार के रखना चाहिदा है इस मटकी नूं जेदे विच परमेश्वर दा नाम जिस विच ए परमेश्वर दा प्यार दुध टकाउणा है शब्द दी जाग लानी है किवें इस सुरत अते शब्द दा रेड़का पाउणा है किवें इहदे विचों मक्खण आना है यानी तत् अवस्था परम तत् परम आनंद खेम कुशल सहज आनंद दी अवस्था किवें प्राप्त होनी है किवें मनुख ने इस अवस्था ते टिक जाना है इस लेवल ऑफ लाइफ ते पहुंच के स्थिर हो जाना है लगातार ही हो जाना है मुसलसल हो जाना है केड़ा मेरे मन मिष्ट लगे प्रिया बोला रजाब च टिक जाना है मेरे मन मिष्ट लगे प्रिया बोला गुरबाहे पकड़ प्रभ सेवा लाए सद दयाल हर टोला प्रभ तू ठाकुर प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रत पालक प्रभ तू एथे बड़ी सावधानी जे रखनी पैंदी फिर भी कई बारी थिड़कदी है मत प्रभ तू ठाकुर सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच ओंकर तो बिना किते ठाकुर लिखे नहीं तो सावधानी करदिया करदिया भी कई बारी अंदरले भय नाल आपे लगजिश खा जाती है प्रभ तू ठाकुर तां भी इसका यह अर्थ नहीं कि कोई निपुण है प्रभ तू ठाकुर सर्व प्रात पालक मोहे कलत्तर सहत सब गोला मान तान सब तू है एक नाम तेरा मैं बोला किथे टिकना है जी प्राप्ति के की करनी है जे तख्त बैसाले तां दास तुम्हारे ओम मैंने अंगता दा तां अभाव हो गया है जे तख्त बैसाले तां दास तुम्हारे जे परमेश्वर ने अपनी रजा

अत कल्याणकारी अत सुखदाई ते अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए, इन्ना क जरूर बोलो जिदे नाल आप कथे आप सुनने हार होइए, अपना बोले आप सुने।

गुरु के सिख। आज जो कीर्तन का माहौल है, आप दे जो ये संगत के चरणों में हाजरी भरदा गुरु की हजूरी विच, सो सत्संग जीओ। हुणे आप जी ने बड़े सत्कारयोग दीदार सिंह जी चाना पुराने जो गुरसिख हैं जिन्हां नूं पता है कि कीर्तन किवें गाया जांदा सी, अज हर एक ने कीर्तन नूं अपने स्टाइल नाल बना लिया है। जो कीर्तन की पुरातनता है, जो सिखना है, जो राग है, राग नाद सब सच है, पर इस नूं गावे कौन, इस नूं सिखे कौन। हां, पर कुछ गुरमुख प्यारे प्यार वाले पुरातनता जिन्हां ने हाली तक कायम कीती है, हुणे चाना साहब ने कहा कोई चीज सुनाओ। जदों भी कीर्तन शुरू होवे, अजकल महीनियां विच दरबार साहब की मर्यादा यह है कि बसंत दे विच शब्द पढ़िया जाए, सब तो पहला यह मर्यादा है। तो गुरु कृपा करे, मैं आप जी नूं बसंत बसंत चढ़िया फूली बन रहा है। ए जी जंत फूले हर चित लाए, गुरु ग्रंथ साहब कृपा करन ए हरियावल इस करते जो बख्शिश कीती है, गुरु ने जो कृपा कीती है, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। और जो ए रीत है बड़ी पुरातन रीत है, गुरु अर्जन देव पातशाह जदों बसंत राग नूं खोलना, पंज शब्द बसंत दे पढ़ के उस तो बाद कड़ा प्रसाद करना, ए मर्यादा है। और जो ये ताल होएगा, ये पांच ताल दी बराबर दी सवारी है, अशोभ ताल है। आप बड़े प्यार सहित, क्योंकि सात संग जीओ असी किन्ना किन्ना पैसा जाके हालां विच खर्च करने हां, आर्टिस्ट लोगां नूं सुनने हां, कलाकार लोगां नूं सुनने हां जाके, पर जेड़े आप दे जोड़े चाण वाले कीर्तनीय हैं, जब तक तुसी नहीं उन्हां नूं मान दोगे वो किते कोल जाणगे। सो बड़ी आप दी मेहर है, आपने जो ये थोड़ा जा वक्त बख्शिया है, पांच मिनट दे विच आप दी हाजरी पूरी करके, आप बड़े प्यार सहित गुरु अर्जन गुरु अमरदास पातशाह बसंत चढ़िया बसंत महला तीजा।